0: पे घोड़ा,
1: रेडियो हेलसिंकी,
0: घोड़े की दुम पे जमा रहा हथौड़ा,
2: डर सेंडर फॉर यंग एंड ओल्ड,
3: ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर,
2: ऑफ 92.6.
4: मैं ओपा हूँ तुम्हें.